0: your song. Only on City FM 89. It's EDM.
1: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Lionsgate is officially bringing back one of the most stressful cinematic experiences of recent years, releasing the official trailer for the highly anticipated sequel, Fall 2 Dead Point. Following the massive success of the 2022 original, the new survival thriller shifts the high-wire danger to a completely new, unpredictable environment, while maintaining its signature sense of vertigo-inducing dread.
1: You're listening to City FM 89.
5: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: 1 2 3 येलो, 1 2 3 येलो।
8: ये क्या है भाई?
7: 1 जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो। और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
9: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
7: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
10: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया।
3: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: अब तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी दारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: Choose your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
7: एक दो तीन येलो, एक दो तीन येलो.
8: ये क्या है भाई?
9: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो. दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो. और तीन येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो. तो क्या समझी?
10: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैज कैश.
9: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Maal taiyar hai, truck khada hai, mazdoor khade hain. Bas ek cheez ka intezar hai. Payment. Karobar chalane ke liye sirf samaan nahi, reliable banking bhi chahiye hoti hai. Business karna aasaan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. Isliye mere paas hai Bank Alhabib ka Alhabib Current Plus account, jisme mile free checkbook, debit card, banker's check, e-statement, online banking. Alhabib Digital ke zariye internet banking aur SMS alert facility, ATM aur cash deposit machine ki easy accessibility, mulk bhar mein phaila hua branches ka wasi network. Alhabib Current Plus account, bharosa bhi, raftaar bhi. Bank Alhabib, rishta bharose ka.
5: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
6: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
5: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
7: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
8: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाएं फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम.
9: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शन की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
10: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: City FM 89.
11: Attention. The standard commute has been decommissioned.
12: Introducing a system override for your ears.
13: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
14: Join ABD as he takes over the streets.
13: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
12: your evenings just got an upgrade.
14: The rush hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
3: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
15: Guess I'm

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 a.m.
3: City FM 89.
4: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K Electric, and Selani Welfare Trust.
5: Restaurant business mein har second matter karta hai. Customers quality ke saath discounts bhi chahte hain. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट्स फैसिलिटी एटीएम्स एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
6: We're playing your song.
7: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट
8: हाँ भाई 50% कैन यू बिलीव इट
7: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स
9: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89. We're playing your song.
4: Expose yourself to a world of music. And let your worries run free. Expose yourself to something you'll never otherwise experience.
5: Join me, Tapu Javeri, in the dark room while I expose you to some eclectic tunes every Wednesday, 7 to 9 p.m., only on City FM 89.
3: City FM 89, we're playing your song.
6: Everybody go!
0: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: You're listening to City FM 89.
4: Attention, the standard commute has been decommissioned.
5: Introducing a system override for your ears.
4: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
6: Join ABD as he takes over the streets.
4: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
5: your evenings just got an upgrade.
6: The rush hour with ABD.
4: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
5: Tune in or get left behind.
3: City FM 89, we're playing your song.
7: Everybody go!
0: You're listening to
8: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: In intense heat, citizens are advised to take special precautionary measures between 11 a.m. and 4 p.m. Avoid going outdoors unnecessarily. Wear light clothing. Keep your head covered. Avoid strenuous physical activity in direct sunlight. And take special care of children, the elderly, and sick individuals. Drink plenty of water and stay safe. This public awareness message is presented in collaboration with Government of Sindh, PDMA, Commissioner Karachi, K-Electric and Selani Welfare Trust.
3: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
4: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
5: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट?
4: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
6: For online visit, www.bata.com.pk.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89.
4: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
5: Brought to you by Dettol.
6: City FM 89.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City. 89.
11: We're playing your song.
10: You're listening to
12: Non-stop

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 5 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Coming up next,
5: The Rush Hour with ABD.
6: You're listening to City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
8: Trending today.
9: Lionsgate is officially bringing back one of the most stressful cinematic experiences of recent years, releasing the official trailer for the highly anticipated sequel, Fall 2 Deadpoint. Following the massive success of the 2022 original, the new survival thriller shifts the high-wire danger to a completely new, unpredictable environment, while maintaining its signature sense of vertigo-inducing dread.
10: City FM 89.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
11: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients, including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
12: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
13: एक दो तीन ये लो एक दो तीन ये लो
14: ये क्या है भाई
15: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैज कैश पर ये लो से पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
16: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जैज कैश
15: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो
17: Climate change is not a distant threat. It is here. It is now. And with leadership comes responsibility. At OGDC, we are reducing our environmental footprint through transparency, accountability, and globally aligned climate action. Because energy should do more than power progress. It should help protect the future. OGDC. Carrying the greater responsibility. Breathe Pakistan. Supported by OGDC.
18: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
19: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट
20: हां भाई 50% कैन यू बिलीव इट
19: So then, let's go to Bata stores.
21: For online visit, www.bata.com.pk.

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
4: City FM 89.
5: We're playing your song.
6: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
7: Dulux, Dulux, Dulux.
8: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
9: Ye kya hai bhai?
8: Ek, jacket, shoes ho ya watch. जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर ये लो से पेमेंट करो और तीन ये लो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
10: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो ये लो बाय जैस कैश
8: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो
11: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
12: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
13: एक

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: You're listening to City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by Bank Al Habib.
7: City FM 89.
8: तुम कभी ना झुके, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है. हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ ना दिया.
9: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
10: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
11: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
12: Shaadi ka event aur stage aadha taiyar. Kyun? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी,

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Lionsgate is officially bringing back one of the most stressful cinematic experiences of recent years, releasing the official trailer for the highly anticipated sequel, Fall 2 Dead Point. Following the massive success of the 2022 original, the new survival thriller shifts the high wire danger to a completely new, unpredictable environment while maintaining its signature sense of vertigo-inducing dread.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
5: City FM 89.
7: एक दो तीन येलो एक दो तीन येलो
8: ये क्या है भाई
7: एक जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो दो जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो तो क्या समझी
9: जो चाहे खरीदो पैसे आराम से दे दो येलो बाय जैस कैश
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: अवेल अप टू 50% ऑफ एट द डाइनर्स मिड सीजन सेल, हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk। Terms and conditions apply.

0: and Pakistan together today. Ready for tomorrow.
1: Yaar, seriously? Bata pe 50% tak discount?
2: Haan bhai, 50%. Can you believe it?
1: To phir, let's go to Bata stores.
3: For online visit, www.bata.com.pk.
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: Kya aap jante hain? ये उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं इसलिए इंश्योर जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क इंश्योर क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
7: City FM 89.
8: You're listening to

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
4: We're playing your song.
5: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
6: Ye kya hai, bhai?
7: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, Jazz Cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. ये लो बाय जैस कैश.
7: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और ये लो के थ्रू पेमेंट करो.
8: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
2: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट?
1: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
3: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
6: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 03142-898989.
7: Get in touch over WhatsApp.
9: City FM 89. We're playing your song.
10: You're listening to
11: The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show is brought to you by Bank Al Habib.
5: City FM 89.
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और पाए फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
7: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
8: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
9: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर

0: Along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by Bank Al Habib.
4: City FM 89.
5: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se, jaise bilkul naya.
6: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
7: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: अवेल अप टू 50% ऑफ एट द डाइनर्स मिड सीजन सेल. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
10: Kya aap jante hain? उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं. इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स, रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
11: Our TikTok will have you scrolling for days.
1: Follow us at City FM 89
11: on TikTok.
4: City FM 89
12: sounds different.
13: You're listening to
14: The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
3: This show was brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
3: This show was brought to you by Bank Al Habib.
6: City FM 89.
7: Coming up next.
8: Dark Room.
5: You're listening to City FM 89.
9: Trending today.
10: Lionsgate is officially bringing back one of the most stressful cinematic experiences of recent years, releasing the official trailer for the highly anticipated sequel, Fall 2 Dead Point. Following the massive success of the 2022 original, the new survival thriller shifts the high wire danger to a completely new, unpredictable environment, while maintaining its signature sense of vertigo-inducing dread.
8: City
11: FM
8: 89.
12: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
13: ये क्या है भाई?
12: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो, जैस कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन, येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
14: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैस कैश।
12: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
15: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
16: इन ड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन टीएनसीज को तस्लीम करना है।

0: Pakistan together today, ready for tomorrow.
1: Pediasure se Eileen ko milta hai complete balanced nutrition with 37 vital nutrients including arginine and vitamin K2 for bone and muscle growth. Taake ye grow kare 50% faster.
2: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: यार सीरियसली बाटा पे 50% तक डिस्काउंट.
5: हाँ भाई 50%, कैन यू बिलीव इट.
4: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स.
6: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk.
7: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट पास अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
10: Hello there, folks. Welcome to another episode of The Dark Room. I'm Tapu Javeri, and we have some incredible dance music in store for you. I'm picking up stuff from the 90s, a little bit of 80s, and maybe a track or two from the 2000s. But starting you off with this sort of 80s track, this is Chaka Khan with a load of help from Prince, and I Feel For You.
11: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Shaka.

0: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2,500 से ज्यादा इनाम।
1: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: 1, 2, 3 येलो 1, 2, 3 येलो
3: ये क्या है भाई?
4: 1 जैकेट शूज हो या वॉच जो चाहे सेलेक्ट करो। 2 जैज़ कैश पर येलो से पेमेंट करो और 3 येलो से अपनी पेमेंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
5: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज़ कैश।
4: अभी जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
6: पीडियाश्योर से आइलीन को मिलता है कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन विद 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग आर्जिनिन एंड विटामिन K2 फॉर बोन एंड मसल ग्रोथ, ताकि ये ग्रो करे 50% फास्टर।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: यार सीरियसली, बाटा पे 50% तक डिस्काउंट?
4: हाँ भाई, 50%, कैन यू बिलीव इट?
3: तो फिर लेट्स गो टू बाटा स्टोर्स।
5: फॉर ऑनलाइन विजिट www.bata.com.pk।
6: एप्पल सैमसंग

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
0: Coming up next,
1: Future Sounds.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Lionsgate is officially bringing back one of the most stressful cinematic experiences of recent years, releasing the official trailer for the highly anticipated sequel, Fall 2 Dead Point. Following the massive success of the 2022 original, the new survival thriller shifts the high-wire danger to a completely new, unpredictable environment, while maintaining its signature sense of vertigo-inducing dread.
1: City FM 89.
8: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
9: ये क्या है भाई?
8: एक जैकेट, शूज हो या वॉच, जो चाहे सेलेक्ट करो। दो जैज कैश पर येलो से पेमेंट करो। और तीन येलो से अपनी पेमेंट को तीन इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक करो। तो क्या समझी?
1: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। येलो बाय जैज कैश।
8: अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो।
7: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
3: Brought to you by Dettol.
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैज कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैज कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज कैश है ना।
1: 89.
11: Vibe with us, your music.
12: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: your song. Only on City FM 89.
1: Ek, do, teen, yellow. Ek, do, teen, yellow.
2: Ye kya hai bhai?
1: Ek, jacket, shoes ho ya watch. Jo chahe select karo. Do, jazz cash par yellow se payment karo. Aur teen, yellow se apni payment ko 3 installments mein break karo. तो क्या समझी?
3: जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. येलो बाय जैस कैश.
1: अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करो और येलो के थ्रू पेमेंट करो.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
5: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
6: Follow City FM 89 on YouTube to get your digital content fix. Podcasts, reviews, interviews, and so much more. Non-stop content for you.
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
10: City FM 89.
11: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Try not to eat in front of the screen. Mindful eating prevents accidental overeating.
3: Brought to you by Dettol.
4: City FM 89.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to
5: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.